0: मैं कहा सोने हो, की गल हो गई? ओए अज मेरी जान दे मुख तो लाली उड़ी पई है।
1: सोने हुण अपना प्यार सारिया दी अख विच रड़कदा है। मैनू तो यही डर खा रहा है किते साडे विच कोई विछोड़ा ना पा देवे।
0: ओए तू चिंता ना कर, जदों कुंडियां दे सिंग फसे ए लल्ली।

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनुआ के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।
1: अल्लाह

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Welcome back after this beautiful song. Welcome back after the hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM आप सुन रहे हैं right now. मेरा नाम है अभी और आज इस सुबह मैं आपके साथ रहूंगा. Welcome to this beautiful start of the weekend. काफी सारे beautiful songs मैं सिर्फ आपके लिए play करने वाला हूँ, आपके लिए dedicate करने वाला हूँ. So stay tuned with me.

0: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
1: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
0: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
1: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रैडफर्ड।
0: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01274-733-732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London, with even more areas coming soon. Call 01274-735043 or email sales@sunriseradio.fm.

रहा है। वर्ल्ड डैब के जरिए आप सुन सकते हैं इन मैनचेस्टर, एट द सेम टाइम दुनिया के किसी भी कोने में। अपने सिर्फ हमारा ऐप डाउनलोड करना है एंड देन देयर यू गो, इंटरनेट के जरिए आप कहीं भी सुन सकते हैं। और जो हमारी वेबसाइट है ना, सो www.sunrisevideo.fm पे लॉगिन कीजिएगा। सारे अपडेट्स, अपकमिंग इवेंट्स, सब कुछ आप वहाँ पे देख सकते हैं। एट द सेम टाइम रेडियो का लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। सो कीप दैट इन माइंड एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू।

वेलकम बैक आफ्टर द क्लासिक फ्लैशबैक। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि इन गानों को ना कोई भी नहीं बीट कर सकता, इसीलिए कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग यार, काफी एंजॉय किया है मैंने और आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। Well, right now, मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, विच इज आफ्टर द न्यूज और द बीम। ब्यूटीफुल गानों का सिलसिला चलता रहेगा, सो स्टे ट्यून्ड विद मी, आई विल सी यू ऑन द अदर साइड।

वेलकम टू येट अनदर ब्यूटीफुल हिट ऑफ द आवर सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ। इस गाने को अपने पसंद किया होगा ऐसी मैं आशा कर देता हूँ। मेरा नाम है एबी एंड ऑफकोर्स 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा और इस आवर में भी पूरी कोशिश करूँगा कि आपका मनोरंजन किया जाएगा, अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूँ। तो स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम।

मैं काफी सोचता था मम्मी दे बारे, बाला और मोहम्मद पाजी दे बारे, पर सबसे ज्यादा रूपा दे बारे।

Once again, welcome back after yet another beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. आशा करता हूँ कि इस वीकेंड की शुरुआत आप काफी enjoy कर रहे हैं. मतलब रिलैक्स भी करना चाहिए, रेस्ट भी करना चाहिए, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम वीकडेज में नहीं कर सकते, काम के टाइम पे नहीं कर सकते. सो आई थिंक एक लिस्ट अगर हम बनाते हैं ना, छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे काम हो सकते हैं, अगर उन कामों को एक स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम में अगर हम फिनिश करते हैं ना, तो पूरे हफ्ते के लिए आई थिंक हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं. जस्ट अ थॉट. एंड ऑफ कोर्स द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

वेलकम बैक आफ्टर द क्लासिक फ्लैशबैक ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम, नथिंग लाइक द गोल्डन ओल्डीज। पर राइट नाउ मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, व्हिच इज आफ्टर द न्यूज़ और तभी इन ब्यूटीफुल गानों का सिलसिला चलता रहेगा, कहीं ना आप जाइएगा। आई विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ दिस आवर, स्टे ट्यून्ड।

इस आवर के तीसरे घंटे में आपका स्वागत है एंड वेलकम बैक आफ्टर द हिट ऑफ द आवर. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ. ऑफ कोर्स मेरा नाम है अभी और आज 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा. दिस इज द सेकंड लास्ट आवर ऑफ माय शो. एंजॉय कीजिएगा इस वीकेंड की शुरुआत को, इस सुबह की शुरुआत को और सनराइज रेडियो पर प्ले हो रहे हैं इन गानों को. द नेक्स्ट सॉन्ग स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.
1: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाए रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-043 पर कॉल करें

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 723030, दास ब्रेडफोर्ड 723030।
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

Welcome back after this beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. काफी मधुर गाना था यार, I just loved it. only on Sunrise Radio 103.2 FM पर आप सुन रहे हैं इन हसीन गानों को. मेरा नाम है Abby and of course 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा. अगला गाना सिर्फ आपके लिए है, dedicated.

0: गलिया कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पाउंड ना कानस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dampukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

Welcome back after the classic flashback only on Sunrise Radio 103.2 FM. Just took me back in time yaar. Kitna pyara sa gana tha. I hope aapko bhi pasand aa gaya hoga. पर इस आवर की समाप्ति यही खत्म होती है. आई सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ दिस आवर व्हिच इज गोइंग टू बी द लास्ट आवर ऑफ दिस शो. सो मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार व्हिच इज आफ्टर द न्यूज. ब्यूटीफुल गानों का सिलसिला चलता रहेगा. स्टे ट्यून्ड.

शो के आखिरी घंटे में आपका स्वागत है सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। ऑफ कोर्स आप सुन रहे हैं राइट नाउ हीरो ऑफ द आवर के बाद आपका है स्वागत वापस इस शो पर। मेरा नाम है अभी, दिस इज द लास्ट आवर ऑफ दिस शो। कहीं ना जाएगा, काफी सारा ब्यूटीफुल म्यूजिक आएगा इस आवर में भी। द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज। चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शरायत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
3: Who doesn't want to save money on their energy bills and improve their home at the same time? Home Energy West Yorkshire can help you do just that. They offer free, impartial and easy to understand advice, no matter the size of your home or budget. Find out more at their Bradford Interchange pop-up shop every Wednesday and Thursday between 10 and 4. You could even win a prize, including shopping vouchers and family days out. Search Home Energy West Yorkshire.

Welcome back after this beautiful song. Sunrise Radio 103.2 FM आप सुन रहे हैं right now. This beautiful song है जो मुझे भी बहुत पसंद आ गया. मतलब ऐसे गाने होते हैं कि सबको कभी कभी पसंद नहीं आते हैं, पर you know, you just started falling for this song. So this was one for me. और इसी नोट पर अगला गाना सिर्फ आपके लिए डेडिकेट किया जाए.

0: नफसेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: 24 hours a day. Sunrise Radio.
6: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

वेलकम बैक टू द क्लासिक फ्लैशबैक ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। मेरा नाम है अभी और आज इस सुबह 7 बजे से मैं आपके साथ था। काफी मजा आ गया मुझे और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी काफी मजा आ गया इन गानों को सुनकर। वेल राइट नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गो क्योंकि द नेक्स्ट प्रेजेंटर विल बी विद यू। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, योर लव्ड वंस और मेरी और आपकी मुलाकात होगी हमारे अगले शो पर। टिल देन अपने वीकेंड को एंजॉय कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखिएगा, उनका हाल चाल पूछिएगा। Goodbye.

0: हजारों दुआओं, मोहब्बतों, चाहतों और खुशियों के लाजवाल खजानों की ख्वाहिश के साथ नाहिद चट्ठा आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं। जनाब, बिल्कुल वही प्रोग्राम जो एवरी सैटरडे होता है, यानी कि हर हफ्ता के रोज़ 11 से 2, फ्रॉम 11 to 2। जी हाँ, आपका और मेरा साथ रहता है हर हफ्ता के रोज़ 11 से 2। और आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो 100.6 FM, 103.2 FM पर, यानी कि 100.6 FM और 103.2 FM पर अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर। जनाब, आप डैप पर सुन रहे हैं, ब्रेडफोर्ड में, कीतली में, इल्कली में, स्किप्टन में, लीड्स में, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, यानी कि ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन और मिल्टन कीन्स। जनाब, आप अब सुन रहे हैं हमें वेस्ट लंदन में भी। उम्मीद है मेरी आवाज़ हवा के दोष पर आपके कानों से, आपके कानों के परतों पर लैंड करेगी और आप इसको एंजॉय करेंगे। ना सिर्फ मेरी आवाज़ बल्कि खूबसूरत से गीत इस प्रोग्राम में, अच्छी अच्छी सी शायरी होती है, आपसे बातें होती हैं, डिस्कशन आवर होता है जो कि मेरा फेवरेट आवर होता है, जो कि लास्ट आवर होता है फ्रॉम 1 to 2। लेकिन पहले दो आवर्स में भी और आखिरी आवर में भी अच्छे अच्छे से गीत, आपकी टेलीफोन कॉल्स, कुछ शायरी, कुछ बातें। जी, ये तो आप सुन रहे हैं ए डैब पर। लेकिन अगर आप हमें नहीं कैच कर पा रहे थ्रू रेडियो सिग्नल्स, तो आप हमें सुन सकते हैं एप्पल ऐप स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके www.sunrise.radio। जी हाँ, ऑनलाइन आप हमें सुन सकते हैं दुनिया के किसी कोने में भी, जबकि दुनिया का कोई कोना होता ही नहीं है। जी हाँ, पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप हमें सुन सकते हैं। जनाब, आप प्रोग्राम पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं सनराइज रेडियो से, जी हम भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो क्या खूब कहा है शायर ने, करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। की करिए, हमें तो और कोई काम भी नहीं आता आपसे मोहब्बत करने के अलावा। जी सामीन, बगैर कोई टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने हिट ऑफ द आवर की जाने। प्रोग्राम का पहला गीत हिट ऑफ द आवर, उम्मीद है आप पसंद करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो।
1: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6 and even 8 bedroom homes. Call 0127-428-8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the Hour.

0: Wow, that was a great, great, great song. I really enjoyed that. उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा. And Wajid bhai, तुहाडे नाल गल करके बहुत अच्छा लग गया. Thank you very much to be the first caller of the show. हमेशा तुसी appreciate करते हो, तुसी पसंद करते हो, गीत पसंद करते हो, ते साडियां गल्लां खास तौर ते पंजाबी पसंद करते हो, ते तुहाडे वास्ते स्पेशली असी पंजाबी बोलने आ. जनाब अब हम करेंगे टाइम चेक एंड आफ्टर द टाइम चेक विल बी एन एडवर्ट ब्रेक. एडवर्ट ब्रेक होगी और फिर एडवर्ट ब्रेक के बाद खूबसूरत सा गीत बोलियां होंगी जी ब्रारुल हक की आवाज़ में. लेकिन उससे पहले होगी तमाम सुनने वालों के लिए पंजाबी के चंद अशआर और ख़ास तौर पर वाजिद आपके लिए. पहले कर लेते हैं टाइम चेक, उसके बाद बढ़ेंगे कमर्शियल ब्रेक की जानिब.
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: जी सामीन, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि हुआ चाहते हैं 11:14 यानी कि 14 minutes past 11, जो कि किसी भी लम्हे चंद ही सेकंड में 15 मिनट्स पास्ट 11 हो जाएंगे. बढ़ते हैं हम कमर्शियल ब्रेक की जानिब और कमर्शियल ब्रेक के बाद होती है आपसे मुलाकात. हमारे साथ रहिएगा.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

वेलकम बैक सामेईन। कमर्शियल ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं और वादे के मुताबिक वाजिद भाई आपके लिए आपको डेडिकेट करती हूँ ये पंजाबी के चंद अशआर और तमाम सुनने वालों के लिए भी उम्मीद है पसंद करेंगे। तो क्या कहा है शायर ने, ऐ की चन चढ़ा दिता ई, ऐ की चन चढ़ा दिता ई, सानू ही मगरों ला दिता ई, तेनू अपना भेद की दसिया, तू तो रोला ही पा दिता ई, ओए किड्डी जालिम आखे तेरी, किड्डी जालिम आखे तेरी, बंदा ही फड़का दिता ई। हाँ जी, इसके बाद हम सुनते हैं इब्रारुल हक की आवाज़ में बोलियाँ। उम्मीद है आप इंजॉय करेंगे।

जी हाँ, वेलकम बैक सामाइन। आपने सुने बोलियां जनाब इब्रारुल हक की आवाज़ में, उम्मीद है आपने पसंद की होंगी। मैं सुन रही थी और मुझे भी बोलियां याद आ रही थी मज़े मज़े की। एक तो सुनाऊंगी डेफिनेटली, लेकिन गा के नहीं सुना सकती, आई एम सॉरी। तो वो है जी, दो कारां बाजार आईयां चिड़क न देवी सोनिए अखा करन दीदार आईयां। जी हाँ, ये बोली है। और हम बढ़ते हैं अगले गीत की जानिब। और ये गीत जी चौधरी मुजफ्फर साहिब की तरफ से उनके तमाम दोस्तों के नाम है। और तमाम दोस्तों की लिस्ट मैंने उनको कह दिया जी, मेरे पास है और पता नहीं वो मैंने कहाँ लिख दी, किसी पेज में है। सो चौधरी मुजफ्फर जी, आपकी तरफ से आपके तमाम दोस्तों के नाम ये खूबसूरत सा गीत करते हैं, जो कि उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा और आपके दोस्तों को भी पसंद आएगा। बढ़ते हैं इस ब्यूटीफुल ट्रैक की जानिब। हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो।

हाँ, वेलकम बैक समेन। आपने सुनी धमाल, आपको आई होगी पसंद। जी समेन, तारिक जुल्फी जी, उम्मीद है आपके दोस्तों को भी पसंद हो आई होगी धमाल। अब ऐसा है कि टाइम तो नेक्स्ट ट्रैक का नहीं है, जो नेक्स्ट ट्रैक है वो होगा हमारा जनाब फ्लैशबैक गीत, पुराना गीत, वो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हम ऐसा करते हैं, आपको चंद अशआर सुनाते हैं और उसके बाद हम लिए चलेंगे आपको टाइम चेक की जानिब। और टाइम चेक के बाद होगा आपके लिए कमर्शियल ब्रेक के बाद फ्लैशबैक गीत। जी हाँ, तो कहते हैं ना, जिसके एक इशारे

0: किनारे पर मैं मौत से भी लड़ जाता था। आज अगर वो मर भी जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। हाय हाय हाय। जिसका मैसेज ना आने पर दिल जख्मों से भर जाता था। आज अगर वो मर भी जाए तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। कितना दुखी शेर मैंने आपको सुना दिया। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ दुखी ना हो। हम आपको टाइम चेक करते हैं, टाइम जाने और खुश हो जाए और उसके बाद होगा जी कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक के बाद फ्लैशबैक की, पहले करते हैं टाइम चेक।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि हुआ चाहते हैं 11:44 यानी कि 11:44। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद आपका फ्लैशबैक गीत। हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो।
2: ये मैसेज मर्सिडीज बेंज वैंस की ओर से है जो सनराइज रेडियो के साथ मिलकर भेजा गया है। जब आप अपना बिजनेस चलाते हैं तो आपकी वैन सिर्फ ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं होती, ये आपकी रुजय रोटी और आपकी साख होती है। इसलिए मर्सिडीज बेंज वैन्स ने अप टाइम प्रॉमिस बनाया है जो बिजनेस के लिए कई तरह के फायदे देता है, जैसे कि 24 घंटे सातों दिन रोड साइड असिस्टेंस, वर्कशॉप के बढ़े हुए घंटे और गाड़ी की रियल टाइम मॉनिटरिंग। असल में इसमें वो सब कुछ है जो आपको अपनी वैन के डाउन टाइम को कंट्रोल में रखने और अपने बिजनेस को चालू रखने के लिए चाहिए। मर्सिडीज बेंज वैन्स हमेशा आपके साथ है। आज ही मर्सिडीज बेंज वैन सर्च करें और उनके अप टाइम प्रॉमिस के बारे में जानें। नियम और शर्तें लागू। मर्सिडीज बेंज वैन्स का अप टाइम प्रॉमिस, पत्राता के नियमों, गराई की कंपैटिबिलिटी और मर्सिडीज बेंज के अधिकृत रिपेयरर से सर्विसिंग करवाने पर निर्भर करता है। नियम और शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए mbvans.co.uk/uptimepromise पर जाएं।
1: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
1: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Event Bright or call 0770 692 3788.
4: Official media partner Sunrise Radio. Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. sunriseradiogold.com.
5: It's a classic hit flashback as we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

वाह, यारी टूट दिए ते टूट जाए, क्या बात है जी। बिंदिया तो चमकेगी जी, चूड़ी तो छनकेगी। नदीम भाई, नदीम मंसूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी टेलीफोन कॉल का। आपने फ़ोन किया, आपने जो गीत कहा है वो अभी तक तो मुझे नहीं मिला, लेकिन उम्मीद है मिल जाएगा, मैं उसको ढूंढती रहूँगी। कुछ कॉल्स मिस भी हो गई जब मैं टेलीफोन पर बात कर रही थी। जब्बार साहब, प्लीज़ आप मुझे दोबारा कॉल कर लीजिएगा। आई एम सॉरी, आपकी कॉल मुझसे मिस हो गई। तो ऐसा करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी बढ़ते हैं अगले गीत की जानिब, और उस पर जाने से पहले एक शेर सुनाती हूँ। पिछला शेर जल्दी जल्दी में सुनाया था, आई एम सॉरी, मुझे मैंने मज़ा लेके नहीं सुनाया था। अब आपको मज़ा लेके इंजॉय करके शेर सुनाती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है जो सुनाने वाला इंजॉय कर रहा होता है ना, तो फिर सुनने वाले भी इंजॉय करते हैं। क्या ख्याल है? मरीज़ हमको दवाएं बताने लगे, देखिए ना, मरीज़ हमको दवाएं बताने लगे, बुरा हो वक्त तो सब आजमाने, सॉरी, मरीज़ हमको दवाएं बताने लगते हैं, ये है शेर। मरीज़ हमको दवाएं बताने लगते हैं, बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं। नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना, नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना, हर एक चीज़ की कीमत बताने लगते हैं। ऐसा ही है ना? चलिए छोड़िए, बढ़ते हैं अगले गीत की जानिब। जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत गीत, इंजॉय कीजिएगा।

0: जी सामिन, अब हम बढ़ते हैं खबरों की जानिब.
1: From the Sky News Centre at midday, a group of demonstrators dressed in black and wearing balaclavas have stopped traffic going in and out of the port of Dover. Traffic along the A20 has been brought to a standstill, disrupting the movement of lorries and holidaymakers. While the nature of the protests not been confirmed, one local councillor, Chris Vinson, thinks it relates to illegal migration. Our correspondent, Amelia Harper, has the latest.
2: The Port of Dover has released a statement to say that there is an ongoing public order incident affecting all routes in and out of Dover in Kent.
1: Police in Kent say they're engaging with protesters. Police have shot down suggestions from Reform UK that yesterday's delay to Nigel Farage's speech was because they had intervened. The party's leaders expected to speak later, as plans are due to be revealed, which would see a raise in the income tax threshold if elected to government. It's understood Donald Trump's US envoys have arrived in Moscow. The president's previously said they have a proposal to end the war following reports of strikes in Ukraine overnight. Nearly 34,000 tooth extractions administered among children in England last year were due to severe tooth decay. 600,000 school pupils are being targeted with teeth cleaning lessons. Newcastle's new head coach will look to extend his unbeaten start this lunchtime. Matthias Yeisler's side is hosting Bournemouth, having already picked up 4 points with a draw against Liverpool and a win over Spurs. They're currently seventh in the Premier League, but the boss isn't getting carried away.
3: The start was great, but we all were sitting a couple of weeks together as well, and everything looked a bit different. So we see it again, really realistic. We know what to do. We know where we can develop. But again, we also know which challenges will be ahead of us.
1: As the weather heats up in some areas of the country, there's a warning for people to wear sun cream. Figures suggest around 40% of UK adults admit to getting sunburnt last year. That's the latest. I'm Faye Rowlands.
0: वेलकम बैक सामेन. खबरों के बाद और एक पूरे आवर के बाद, जी हाँ, प्रोग्राम का पहला घंटा ख़त्म हुआ. नया आवर, नया घंटा स्टार्ट हुआ. बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साथ निभाने का, आपकी टेलीफोन कॉल्स का. और मुझे पता चल जाता है आप जब फ़ोन करते हैं बताते हैं कि आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं. थैंक्स फॉर द अप्रिसिएशन एज वेल. तो इस तरह गल है जी कि अभी जो टेलीफोन कॉल आ रही है, प्लीज़ मैं इस वक्त बात कर रही हूँ, तो फिर मैं बात के बाद आप प्लीज़ मुझे फ़ोन कीजिएगा. जब मैं हिट ऑफ द आवर लगाऊंगी फिर मैं बात करूंगी. तो गल इन जे जनाब, तुसी सुन रहे हो सनराइज रेडियो. मेरा नाम है नाहिद चट्ठा. मेरा और आपका साथ रहता है एवरी सैटरडे From 11 to 2, 11 से 2 बजे तक, every Saturday, हर हफ्ता के रोज. Sunrise Radio पर, यानी के 100.6 FM और 103.2 FM पर, across West Yorkshire. लेकिन DAB पर आप सुन सकते हैं, Bradford में, Keighley में, Ilkley में, Skipton में, Leeds में, Halifax, Manchester और East Lancashire, यानी के Blackburn, Burnley, Darwin, Nelson, Accrington और Milton Keynes में. और अब वेस्ट लंदन में भी, जी हाँ, हमारी आवाज़ डैब के ज़रिए पहुंच रही है. अगर आप इन सब जगहों से नहीं सुन सकते, डैब से नहीं सुन सकते, या आप इन सब जगहों से बाहर हैं, तो आप अपने फ़ोन पर या अपने लैपटॉप पर, टेलीविज़न पर, एप्पल ऐप स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सुनिएगा. वेबसाइट है हमारी www.sunrise.radio. जी हाँ, Sunrise Radio 24/7 आपके साथ, आपकी खुशी में, आपकी गमी में, गर्मी में, सर्दी में, दिन में, रात में, बाहर में, खिजा में, हर मौसम में, दिल के भी हर मौसम में सनराइज रेडियो आपके साथ रहता है. तो जनाब, प्रोग्राम के सेकंड आवर में हम सुनते हैं अपना हिट ऑफ द आवर, और फिर हाजरा जी आपके लिए हिट ऑफ द आवर के बाद होगा मोहम्मद रफ़ी का गीत. मैं थोड़ा सा दुखी गीत लगाने को अवॉइड करती हूँ. की करिए ना, बड़ी जल्दी दुखी हो जाने आसी. छोटी जारी दुखी गल सुन लीए ना, तो फिर असी आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाने. इस वास्ते ऐसी ट्राई करने आ के खुश खुश गाने लगाइए. लेकिन हाजरा जी आपके लिए ढूंढेंगे कोई दुखी गाना. लेकिन मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का गीत जो होगा वो हिट ऑफ द आवर के बाद होगा, स्पेशली आपके लिए. मेरी पसंद का गीत सुनिएगा. तो अभी सुनते हैं हिट ऑफ द आवर।
4: The hit of the hour is brought to you by Sophie Jewelers, with a wide range of designs of all kinds of jewelry. Sophie Jewelers, 119-21-21, Oak Lane, Bradford 9. Call 01274-056-014.

0: जी, जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे, कोई इनको बताए। आप इंग्लैंड में होंगे और काम कर रहे होंगे दिन रात, पाउंड बना रहे होंगे, पैसे कमा रहे होंगे। ये जो बातें थी वो उसी वक्त की बातें थी, क्या कहा जाए। हाजरा जी, स्पेशली आपके लिए चंद अशआर और तमाम सुनने वालों के लिए, इंजॉय कीजिएगा। वो जज्बों की तजारत थी ये दिल कुछ और समझा था, वो जज्बों की तजारत थी ये दिल कुछ और समझा था, उसे हंसने की आदत थी ये दिल कुछ और समझा था। मुझे उसने कहा आओ नई दुनिया बसाते हैं, उसे सूझी शरारत थी ये दिल कुछ और समझा था। हमेशा उसकी आंखों में धनक से रंग होते थे, हमेशा उसकी आंखों में धनक से रंग होते थे, ये उसकी आम हालत थी ये दिल कुछ और समझा था। हाय हाय। वो मेरे पास बैठा देर तक गजलें मेरी सुनता, वो मेरे पास बैठा देर तक गजलें मेरी सुनता, उसे खुद से मोहब्बत थी ये दिल कुछ और समझा था। मेरे कंधे पे सर रख के कहीं पे खो गया था वो, मेरे कंधे पे सर रख के कहीं पे खो गया था वो, ये एक वक्ती अनायत थी दिल कुछ और समझा था, ये एक वक्ती अनायत थी ये दिल कुछ और समझा था। क्या ख्याल है, उम्मीद है आपने पसंद किए होंगे ये अशआर। जनाब, अब हम करते हैं टाइम चेक, और टाइम चेक के बाद कमर्शियल ब्रेक होगी और फिर एक मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत होगा। मोहम्मद बशारत जी आपके नाम और हाजरा जी आपके नाम।
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: जी, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि हुआ चाहते हैं 12:15 यानी के 12:15 यानी के 12:15 हो गए ने जी, और 12:15 जी। बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब और उसके बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं।
2: कुल्लो नफ्सिन ज़ायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
4: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
5: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

लिखे जो खत तुझे, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना जी। ये हमने किया था ख़ास तौर पर हमारी लिसनर हाजरा जी और मोहम्मद बिशारत जी आपके नाम, और आपको डेडिकेट किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो ऐसा है कि जी हमारा जो अगला गीत है, अब मैंने दो गीत लाइन अप किए हुए हैं और मुझे दोनों ही बहुत पसंद है। एक लता मंगेशकर की आवाज़ में मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, और एक है जी मैं ना भूलूंगा मुकेश की आवाज़ में। ऐसा करते हैं कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, इसको करते हैं पहले प्ले, और दूसरा गीत हम अपने हाफ एन आवर ब्रेक के बाद करेंगे। तो ये गीत सुनिए और इन्जॉय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जब्बार साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही पुरहासिल गुफ्तगू हुई आपके साथ। इंशाल्लाह जो अगला गीत होगा वो आपके नाम करेंगे, अभी आप फिलहाल इस गीत से गुजारा कीजिए। और तमाम सुनने वालों के लिए मेरी तरफ से ये गीत, मैं नहीं कह रही हूँ मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, लता मंगेशकर कह रही हैं अच्छा मेरे मत्थे ना लगाना।

0: हाँ जी, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, कम ते तू ठीक नहीं कीता, हुन दस तेरे नाल की सलूक कीता जाए। लोग तो लोग थे जी भर के खसारा करते, लोग तो लोग थे जी भर के खसारा करते, कम से कम तुम तो ना नुकसान हमारा करते। कर तो लेना था तेरे साथ गुजारा लेकिन, कर तो लेना था तेरे साथ गुजारा लेकिन, अब तेरे साथ भी करते तो गुजारा करते। कर लिया था तो तवक्को नहीं रखते हमसे, कर लिया था तो तवक्को नहीं रखते हमसे, इश्क था कर्ज नहीं था के उतारा करते, इश्क था कर्ज नहीं था के उतारा करते। एक बस हम ही मुयस्सर थे हमें गिरते समय, एक बस हम ही मुयस्सर थे हमें गिरते समय, खुद को अब आसरा देते के सहारा करते। लोग तो लोग थे जी भर के खसारा करते, कम से कम तुम तो ना नुकसान हमारा करते, है ना। चलिए सामिन, बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब, और कमर्शियल ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात, हमारे साथ रहिएगा।
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: ऋषि's विजन प्रेजेंट्स आनंद मूर्ति गुरुमा इन लंदन। लर्न टाइमलेस योगिक विजडम डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर्ड मास्टर। जॉइन अ 3-day सीरीज ऑफ इनलाइटनिंग टॉक्स ऑन योग सूत्रास फॉर रियलाइजिंग द ट्रू सेल्फ, 11th to 13th September 2026। लाइफ चेंजिंग सेशंस फीचरिंग प्रोफाउंड टॉक्स, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY, on Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details call AK Basra, 07977201226, Mirdosh Kumar, 07899055525, Gurkirit, 07886-545970, Usha, 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

हाँ जी मैं ना भूलूंगा और मैं ना भूलूंगी कि अभी गल्ला ने की ख्याल है भूल तो सभी जाते हैं, बहुत सी बातें भूल जाते हैं। चौधरी मुजफ्फर जी आपसे दोबारा बात हुई और आप कह रहे हैं कि आज हम बड़े पुराने पुराने गीत लगा रहे हैं, आज शायद मेरे अंदर कोई पुरानी रूह जागी हुई है और मैं पुराने गीत लगा रही हूँ। मुझे पता है कि मेरे बहुत से लिसनर्स बशमूल मेरे, मैं ख़ुद भी अपने लिसनर हूँ और सुन रही होती हूँ गीत, तो हम पुराने गाने बहुत पसंद करते हैं लेकिन मिले जुले गीत सबको कैटर करने की कोशिश करते हैं। तो आपके लिए अगला गीत जो है वो नूर जहाँ की आवाज़ में, वाह वाह वाह क्या बात है जी, नहीं सॉरी नसीम बेगम की आवाज़ में, गलती हो गई जी, माफ़ कीजिएगा। छल्ला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी पंजाबी का गीत है, उम्मीद है आप पसंद करेंगे। पंजाबी का गीत हो तो पंजाबी दी शायरी ना हो गल नहीं बंदी। अज फिर ओदा मैसेज आया, अज फिर ओदा मैसेज आया, हुन तबीयत कैसी है, जी करदा है रिप्लाई करदा, जी करदा है रिप्लाई करदा, पूछदी रही ते बच जांगे जनाब छल्ला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी।

0: तेरे गल कैंठा मेरे गल गानी छला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी। हाँ जी, ये तो आपने गीत सुना। अब चंद मिनट रह गए हैं हमारी कमर्शियल ब्रेक में और उसके बाद फ्लैशबैक गीत होगा। तो समीन, इस दौरान आपको मैं चंद अशार सुनाती हूँ, फिर उसके बाद हम टाइम चेक करेंगे और टाइम चेक के बाद जनाब हमारा कमर्शियल ब्रेक और फिर फ्लैशबैक गीत। तो क्या कहा है शायर ने, मुझे तुम छोड़ मत देना, मुझे तुम छोड़ मत देना, हजारों दूरियां आए बहारें आक खो जाए, बहारें आकर खो जाए, मेरा चेहरा भुला देना, मेरी यादें बचा लेना, जो लम्हे दर्द देते हों उन्हें बेशक भुला देना, जो लम्हे दर्द देते हों उन्हें बेशक भुला देना, जो लम्हे आस देते हों उन्हें दिल से लगा लेना, कहीं भी दूर रह लेना बहुत मजबूर रह लेना, कहीं भी दूर रह लेना बहुत मजबूर रह लेना, मगर ताल्लुक तोड़ मत देना, मुझे तुम छोड़ मत देना, मुझे तुम छोड़ मत देना, हजारों दूरियां आए बहारें आके खो जाएं, मेरा चेहरा भुला देना, मेरी यादें बचा लेना, जो लम्हे दर्द देते हों उन्हें बेशक भुला देना, जो लम्हे आस देते हों उन्हें दिल से लगा लेना, कहीं भी दूर रह लेना बहुत मजबूर रह लेना, मगर ताल्लुक तोड़ना तोड़ मत देना, मुझे तुम छोड़ मत देना। ऐने तरले है ना, बहुत मिनते, बहुत ही खूबसूरत शायरी दो जनाब। ऐसा कर लेते हैं कि अब हम कर लेते हैं टाइम चेक और टाइम चेक के बाद हमारी कमर्शियल ब्रेक होगी, देखते हैं कि टाइम क्या हुआ चाहता है।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: टाइम जी इस वक्त हुआ चाहता है टैम की हो गया जी, टाइम नहीं टैम की हो गया जी टैम हो गया जी 12:43 यानी कि 12:43। तो समय हम बढ़ते हैं अपने कमर्शियल ब्रेक की जानिब और कमर्शियल ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात

जी समीन, वेलकम बैक। बहुत ही खूबसूरत गीत। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हसी। ऐ वीना, बस गलना ही बनिया ने, कौन ऐसे कहता है और कौन ऐसे करता है ना? तो ऐसा करते हैं कि हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की जानिब। अगला गीत भी अच्छा। कुछ लोग फ़ोन करके कह रहे हैं, यास्मीन बहन का फ़ोन आया और वो कह रही हैं कि उनको गीत बहुत पसंद आ रहे हैं, पुराने गीत, और वो इन्जॉय कर रही हैं। तो ऐसा करते हैं, एक और पुराना गीत सुनते हैं, लेकिन उसके बाद हम बढ़ेंगे कुछ 90s के गीत की जानिब। तो मैं आपको लिए चलती हूँ अगले गीत की जानिब। वो भी मोहम्मद रफ़ी की ही आवाज़ में है, मुझे इश्क है तुझे से। बचपन की याद ताज़ा कर लो सारे और इन्जॉय करें आप सब। बहुत ही खूबसूरत गीत है, आपको उम्मीद है पसंद आएगा। बढ़ते हैं इस अगले गीत की जानिब। मुझे इश्क है तुझे से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। दिल तो कर रहा था अभी ये गा दूँ, क्या मज़े गीत है, मज़े का गीत है।

जी समयन वेलकम बैक। आपने ये खूबसूरत सा गीत सुना और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की जानिब। अब मैं ये सोच रही हूँ कि चार मिनट हैं तो कि हम क्या करें। एक ये वाला गीत सुनते हैं और अगर एंड से थोड़ा सा कट गया तो माफ़ कीजिएगा। बढ़ते हैं इस गीत की जानिब, बहुत ही खूबसूरत गीत।

0: तेरा।
1: जी हाँ सामिन, मुझे तो लगता है कि ये जो गीत है ये पूरा नहीं हो पाएगा, और हम आधा तो इन्होंने टाइम हा हा करने में वेस्ट कर दिया, और अब इतने आहिस्ता से। नहीं भाई, आप रहने दें, थैंक यू आपकी, है ना। हम शेर सुनते हैं और फिर हमारे खबरों का टाइम हो जाएगा, खबरों की तरफ बढ़ते हैं, क्या ख्याल है। सबसे पहले तो जीत कौर जी, थैंक यू वेरी मच आपकी टेलीफोन कॉल का, प्रोग्राम को सराहने का, पसंद करने का। और मज़े की बात जीत कौर आंटी जी ने की, हाय आंटी जी की गल्लां करते हो तुसी ना, दिल मोह लेंदे हो। आंटी कहती है नहीं तो तेरे नाल ही सानू तो इश्क हो चला है। थैंक यू सो मच आंटी जी, इतनी प्यारियां गल्लां करन ते। तो अशार कुछ यूँ है जनाब, हम क्योंकि टाइम थोड़ा है, न्यूज़ ब्रेक आने वाला है, तो फिर हम ये गीत आपको न्यूज़ ब्रेक के बाद ही सुनाएंगे। तो अशार कुछ यूँ हैं, अपनी बातों में मेरे नाम के हवाले रखना, अपनी बातों में मेरे नाम के हवाले रखना, मुझसे दूर हो तो खुद को संभाले रखना। बड़ा मैसेज है इसमें, अच्छा है नहीं हो के कुछ और ही कम होया होए, है ना। अपनी बातों में मेरे नाम के हवाले रखना, मुझसे दूर हो तो खुद को संभाले रखना। लोग पूछेंगे कि क्यों परेशान हो तुम, कुछ निगाहों से कहना, जबान पे ताले रखना। न खोने देना मेरे बीते लम्हों को, मेरी यादों को बड़े प्यार से संभाले रखना। तुम लौट आओगे इतना यकीन है मुझको, तुम लौट आओगे इतना यकीन है मुझको, मेरे लिए कुछ वक्त निकाले रखना। वक्त की तो सामने सारी बात होती है, आजकल वक्त ही तो नहीं है किसी के पास किसी के लिए। दिल ने बड़ी शिद्दत से चाहा है तुम्हें, दिल ने बड़ी शिद्दत से चाहा है तुम्हें, मेरे लिए अपने अंदाज वही पुराने वाले रखना। आगे बदले बुदले ना होना, कहने का ये मतलब है, ठीक है ना। तो छोटी सी लाइनों में, चंद अल्फाज में बहुत गहरी बातें हो जाती हैं, क्या ख्याल है। ऐसा ही है, ये ही करते हैं शोरा इकराम, छोटी सी बात करते हैं और बहुत ही गहरी बात हो जाती है, और फिर उन गहरी गहरी बातों में बहुत बहुत किस्से कह दिए जाते हैं। बहुत से लोग शायरी के साथ खुद को रिलेट करते हैं, है ना, ऐसा ही है ना। चलिए छोड़िए, बढ़ते हैं न्यूज़ की जानिब।
2: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
3: From the Sky News Centre at 1. Traffic is now able to get in and out of the port of Dover after protesters blocked routes this morning. Earlier videos from the area appeared to show demonstrators dressed in black shouting stop the boats as vehicles were prevented from getting through part of the A20. One councillor says it could be illegal migration related, but that's not been confirmed. Here's policing and crime commentator Danny Shaw.
4: There is a requirement on anyone who wants to hold a moving protest to notify the police at least 6 days in advance about what they're planning to do, when they're planning to do it. And it would appear that didn't happen in this case. The organisers are potentially breaking the law.
3: Reform UK is promising to raise the income tax personal allowance to £15,000 if elected to government. Its Treasury spokesperson Robert Jenrick's expected to announce it later as the party attempts to move on from allegations about its finances. It's reported a 64-year-old woman's been found alive in the debris of her buried home 10 days after devastating floods in Nepal. She's apparently been airlifted to a hospital in Kathmandu. It's understood a plane carrying US envoys has landed in Moscow. Donald Trump's previously said Jared Kushner and Steve Witkoff were being sent with what he described as a proposal to end the war in Ukraine. Bournemouth are playing Newcastle in today's first Premier League game. Stephen Goldsmith is at St James Park.
0: Yes, and they lead by a goal to nil. Marcus Tavernier's early goal separates the sides. Newcastle failing on three attempts to clear the ball. In the end, it was deflected into the area with the defence being too slow to react. Tavernier nipped in to score. They should be two up. Tavernier again and Ivanilson have missed great chances. They are well on top here. Newcastle nil, Bournemouth one.
3: 600,000 children across England will be taught how to brush their teeth in school this year. Tooth decay is the main cause of hospitalisation among young people, with almost 34,000 related extractions in 2025 alone. That's the latest. I'm Faye Rowlands.
1: वेलकम बैक सामेन प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी आवर में जिन्होंने अभी अपने रेडियो सेट्स ऑन किए हैं उनको बता दूं उनको याद दिला दूं कि मैं हूं नाहिद चट्ठा और मेरा और आपका साथ रहता है एवरी सैटरडे फ्रॉम 11 टू 2 यानी कि 11 से 2 बजे तक तो ये भी याद दिला दूं आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो 100.6 एफएम और 103.2 एफएम पर अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर डेप पर जनाब आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड में कीथली में इल्कली में स्किप्टन में लीड्स में हैलिफैक्स में मैनचेस्टर में ईस्ट लंकाशायर यानी कि ब्लैकबर्न बर्नली डार्विन नेल्सन एकरिंगटन और मिल्टन कीन्स में और अब हमारी नशरियात सुनी जा रही हैं वेस्ट लंदन में भी जनाब अगर आप डेप पर हमें किसी वजह से नहीं सुन पा रहे तो आप हमें सुन सकते हैं एप्पल ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ऑनलाइन जी हाँ वेबसाइट है www.sunrise.radio कैसा लगा जी सामिन तो ये हुई ना बात प्रोग्राम के आखिरी आवर में हम दाखिल हो चुके हैं आपको बता दें कि ये आवर होता है हमारा डिस्कशन आवर डिस्कशन आवर यानी कि हम एक टॉपिक पे बात करते हैं आपकी टेलीफोन कॉल्स का इंतज़ार रहता है बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो हमें गीत के दौरान फ़ोन करके अपने ख्याल का इजहार कर देते हैं ऑफ एयर और फिर मैं उनकी बात आप तक पहुंचा देती हूं कि हर कोई कंफर्टेबल नहीं फील करता कि वो ऑन एयर बात करे हम हर एक की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हैं हर एक के ख्यालात को रिस्पेक्ट करते हैं इस वजह से अगर कोई ऑन एयर बात करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो वो आप हमें बात कर दीजिएगा ऑफ एयर बता दीजिएगा कि आपके क्या ख्यालात हैं तो ऐसा है कि आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और वो हम सब हम उससे रिलेट करते हैं जो लोग पाकिस्तान में बड़े हुए वो और यहाँ पर मौजूद हैं वो सबसे ज़्यादा इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि पेरेंटिंग जो पेरेंट्स का माँ बाप का बच्चों के साथ एक तो रिलेशन है पेरेंटिंग कैसी है आपको पाकिस्तान में जो माँ बाप का हमारी तरबियत का अंदाज था उसमें और यूके में जो तरबियत का अंदाज है उसमें क्या फ़र्क नज़र आता है और ये फ़र्क ठीक है कि गलत है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पाकिस्तान में पेरेंटिंग में गलत लगती थी और यहाँ पर ठीक लगती हैं इसमें बहुत सी मिसालें मौजूद हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में पेरेंटिंग में हमारी तरबियत में बेहतर थी और वो अब हम उन कदरों को उन वैल्यूज़ को खोते चले जा रहे हैं जो यहाँ पर अब मौजूद नहीं हैं बहुत ही वास्ट टॉपिक है बहुत कुछ इस बारे में हम कह सकते हैं मैं भी कह सकती हूँ मैं तो ये भी कह सकती हूँ कि मुझे तो भाई पाकिस्तान में अम्मी से बहुत मार पड़ी है मैं बहुत शरारती थी और बहुत मार पड़ा करती थी ख़ास तौर पे जब हम कहीं जाते थे शादी वगैरह में या किसी के घर तो मुझे पता होता था पक्का जनाब जाके फेंटी पैनी पैनी है तो ऐसा ही है मैं जब भी बहुत शरारती थी मैं अब भी बहुत शरारती हूँ लेकिन अब अल्लाह बख्शे जन्नत मकानी अम्मी रही नहीं अब अम्मी मार नहीं सकती लेकिन शरारतें तो वही हैं तो ऐसा होता है कि लेकिन फिर भी अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे कि वो तरबियत हमारी ऐसी कर गए कि कभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उन्होंने मना किया और अभी कोई ना भी देख रहा हो अभी कोई मना करने वाला नहीं है अभी कोई डांटने वाला नहीं है मारने वाला नहीं है लेकिन फिर भी वो दिल ही नहीं चाहता वो चीज़ें करने के लिए। कुछ अदब आदाब वो ऐसे सिखा गए। मेरी अम्मी को टेबल मैनर्स की बहुत ज़्यादा बहुत ही थी, बहुत कॉन्शियस होती थी। खाना खा रहे हो, मुंह से आवाज़ क्यों आ रही है, आपने मुंह में निवाला डालकर बात क्यों की है। उनको मैनर्स पे बहुत गुस्सा आता था। अगर हमें हमारे मैनर्स ख़राब हैं ना, तो हम थैंक यू प्लीज़ नहीं कहते थे ना। अगर हम वो हमें कुछ दें या कोई हमें दे, अम्मी मुझे कुछ दें और मैंने थैंक यू नहीं बोला या शुक्रिया नहीं बोला, तो अम्मी वापस ले लेती थी। हाय हाय, इन्नी ज़ालम बच्चों को। लेकिन वो ऐसी चीज़ें सिखा गए कि अभी तक हमें वो इनबेड हो चुकी हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुकी हैं। तो आपके ख्यालात का इंतज़ार रहेगा, आप इस बारे में क्या कहते हैं। मैं अभी करूंगी हिट ऑफ द आवर प्ले, और हिट ऑफ द आवर के बाद आपकी बातें सुनेंगे और आपकी टेलीफोन कॉल सुनेंगे कि आप इस पेरेंटिंग के डिफरेंस को क्या कहना चाहेंगे और क्या चीज़ें थी जो आपको वहाँ की पसंद थी और पेरेंटिंग में अच्छी लगती थी, और कौन सी चीज़ें आप समझते हैं नहीं होनी चाहिए थी। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत मुवाजना, मुझे पता है कि मेरे लिसनर्स जो हैं बहुत बहुत बहुत समझदार हैं, बहुत जीरक हैं और बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो आप हमें फ़ोन कीजिएगा 01274, जो कि ब्रैडफोर्ड का कोड है, 3066666 पर। एक दफ़ा फिर दोहरा दूँ, क्योंकि अब बहुत से दूसरे एरियाज़ भी डैप पर हमें सुन रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेस्ट लंदन में भी। तो हमें स्टूडियो में फ़ोन करने के लिए नंबर है 01274, जो कि ब्रैडफोर्ड का कोड है, और 3066666 हमारा स्टूडियो का नंबर है। आप हमें फ़ोन कीजिएगा, और अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं तो ज़रूर प्रोग्राम में शामिल होइएगा। हमें इंतजार रहेगा। बढ़ते हैं हिट ऑफ द आवर की जानिब।
5: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, ये गीत तो बहुत खूबसूरत है, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे इससे थोड़ी सी वो रहती है, क्योंकि जब मैंने पहली बार ये गीत सुना था सामिन, तो मुझे जब भी लगा कि पहली बार, तो इससे पहले क्या देखा था आंखों में, क्या था, क्या चल रहा था, कोई गुस्सा देखा, क्या देखा, पहली बार प्यार देखा है आंखों में, ऐ तो गल नहीं बनती वैसे, है ना। चलो कोई गल नहीं, मैं अभी आपको किन सोचों में डाल देती हूँ, टाइम चेक करते हैं और कमर्शियल ब्रेक की जाने बैठते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि हुआ चाहते हैं 1:15, यानी कि 1:15 past 1। बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब, कमर्शियल ब्रेक के बाद होती है आपसे मुलाकात, हमारे साथ रहिएगा।
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम, इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कब्र को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
4: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London. With even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.

0: वेलकम बैक सामेन, कमर्शियल ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी एक बहुत ही प्यारी कॉलर यास्मीन, जो कि हमेशा हमें बहुत बहुत अच्छे अल्फाज, बहुत बहुत अच्छे ख्यालात से नवाजती हैं। उनके व्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं, उनसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। तो ऐसा करते हैं, यास्मीन को लेते हैं लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन।
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आपकी दुआ है, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम सबकी तरफ से। जी यास्मीन, आप क्या कहना चाहेंगी इस टॉपिक के बारे में?
1: सबसे पहले तो मैं एक आपको छोटा सा एक शेर सुनाती हूँ, अगर आप सुन सकते हैं तो।
0: जी जरूर सुन सकते हैं, क्यों नहीं, कहिए इरशाद।
1: नहीं चाहिए हिस्सा भैया, नहीं चाहिए हिस्सा भैया, मेरा मेका सजाए रखना। नहीं चाहिए हिस्सा भैया, मेरा मेका सजाए रखना, बस एक छोटी सी इल्तजा है कि यहीं मेरे माँ बाप की यादों को इस घर में बसाए रखना।
0: क्या बात है, हाय रुला दिया लड़की। क्या बात है, बहुत ही, बल्कि आजकल इस टॉपिक पे काफ़ी बात हो रही है और बहुत बहुत नए रूल्स निकल रहे हैं कि हिस्सा, बहनों का हिस्सा देने पर। लेकिन बहुत बहुत खूबसूरत शेर, इंतहाई खूबसूरत, मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत शुक्रिया ये सुनाने का। अब बताइए कि पाकिस्तान की आप समझते हैं जो तरबियत माँ बाप करते हैं बच्चों की, हमारे पाकिस्तान की वैल्यूज़ के मुताबिक, या इंडिया में या जो भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके जो उनसे होते हैं ना तौर तरीके, उनके डिफरेंट होते हैं, मर्यादाएँ उनकी डिफरेंट होती हैं, वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं और हमारी तरबियत डिफरेंट तरीके से होती है। उसमें मार भी पड़ती है, जुतियाँ भी पड़ती हैं, गालियाँ भी पड़ती हैं और यहाँ पर कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। व्हाट डू यू थिंक, क्या चीज़ें वहाँ की अच्छी हैं जो यहाँ पे नहीं है, और कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे अच्छी हैं वहाँ नहीं होती?
1: मेन चीज़ तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको अच्छा लगा तो, मैं कहती हूँ कि सबसे मेन चीज़ ये है कि इत्राम होता है, यहाँ पे भी इत्राम करते हैं, लेकिन मेन चीज़ मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में इत्राम को बहुत तरजीह दी जाती है कि सबसे पहले पेरेंट्स का इत्राम कैसे किया जाता है।
0: बहुत सही, ना सिर्फ पेरेंट्स बल्कि बुजुर्गों का, सब बुजुर्गों का, अपने से बड़े बहन भाइयों का भी, बिल्कुल सही बात की।
1: सब बड़े बड़े जो भी हैं उनका इत्राम किया जाता है। एक एक मेन चीज यही देख लें कि हम वहाँ के पाकिस्तान में छोटे को तुम कहकर पुकारते हैं और बड़े को आप कहकर पुकारते हैं, यहाँ पे सबको यू कहकर पुकारते हैं।
0: क्या बात है जी, क्या बात
1: ये
0: है?
1: हो गया, हाँ यू कहकर पुकारते हैं, तो उसमें एहतराम का दायरा तो मेरे ख्याल से अगर आपके मन में हो भी तब भी हम वो उसको पुकार नहीं सकते, यू ही कहेंगे ना।
0: सही
1: तो
0: बात है,
1: इसलिए मेन चीज तो ये भी है। और नंबर दो, पेरेंट्स माशाल्लाह से, पेरेंट्स वो कौन से पेरेंट्स हैं जो अपनी औलाद को सुधारना नहीं चाहेंगे? हर पेरेंट्स की यही ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे अच्छी अच्छी तरबियत हासिल करें और अच्छे बने, और इसकी हमेशा एक फूल की तरह खुशबू आए, ठीक है ना। तो मेन वो चाहे पाकिस्तान हो या इंग्लैंड हो या कोई और कंट्री हो, ठीक है, सब सबका यही ख्याल होता है कि मेरे जो मेरी औलाद है वो अच्छी बने और अच्छी अच्छी परवरिश पाए, ठीक है, हर पेरेंट्स का। लेकिन यहाँ पे रूल्स के मुताबिक या इस यहाँ पे जो होते हैं क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ के रहन सहन या तो तरीके कुछ ऐसे होते हैं कि जो यहाँ के कल्चर के लिहाज से हम ले लो कुछ भी होता है तो उसको हम फिर बेबस हो जाते हैं। यहाँ पेरेंट्स जो है ना वो ज्यादातर बेबस हो जाते हैं, वहाँ पे पाकिस्तान में ये नहीं होता।
0: ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी,
1: यहाँ पे थोड़ा सा
0: सबसे बूढ़े बुजुर्ग कमजोर नाइफ दादा जान दादी जान भी घर में हो तो उनकी जो बात की वैल्यू होती है वो सबसे ज्यादा अहमियत रखती है,
1: सबसे ज्यादा है। और बार दफा होता है पाकिस्तान में, देखिए हम अपने मेरे अम्मी और अब्बू होंगे ना, अगर मेरे दादी दादा मौजूद हैं या मेरे नानी नाना है ना, तो हम अपने पेरेंट्स को भी इतनी वो देंगे अहमियत देंगे, लेकिन जो दादी दादी की अहमियत होगी ना वो उनसे भी बढ़ के होगी हमारे पास,
0: ग्रैंड पेरेंट्स की, बिल्कुल।
1: इसलिए बहुत यहाँ और अबाउदाद वहाँ के और यहाँ पे रूल्स का काफी फर्क है अगर देखा जाए तो, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग जो यहाँ के नियत के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, मैं कहती हूँ कि जो जो लोग
2: करते हैं पेरेंट्स की कदर। बार दफा होता है ऐसे कि बच्चे जब स्कूलों में चले जाते हैं अपने फ्रेंडों में बैठते उठते हैं तो फिर साथ बात वो चीजें कहते हैं कि मजलिस के जल्दी जो है इन्वेस्ट हो जाते हैं ना।
0: बिल्कुल सही, बहुत बहुत अच्छी बातें की आपने, बहुत शुक्रिया यास्मीन। हमेशा आप डिफरेंट बात करती हैं और ऐसे नुक्ते की तरफ ध्यान दिलवाती हैं जिस पे मेरा ध्यान नहीं गया होता। बहुत शुक्रिया, आई रियली अप्रिशिएट दैट, बहुत शुक्रिया आने का।
1: थैंक यू।
0: अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। समीन, इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। आयशा जी, अस्सलाम वालेकुम। आयशा कैसी हैं आप?
3: वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? सुनाओ, ठीक है?
0: ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ। आप बताइए कि आपका इस टॉपिक के बारे में क्या ख्याल है, जो डिफरेंस है पेरेंटिंग का, पाकिस्तान में पेरेंटिंग का और यहाँ में पेरेंटिंग का, और कौन सी चीज़ें जो वहाँ सिखाई जाती हैं और यहाँ नहीं, और या यहाँ सिखाई जाती हैं और वहाँ नहीं, क्या ख्याल है कि क्या मुवाजना करेंगी?
3: एक्चुअली मेरी औलाद नहीं है, मैं माँ नहीं बनी और ना ही मेरे बच्चे हैं कि मैं मुझे अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बताऊं, पर जो मेरी सोच है, जो मैंने अपनी आंखों में देखा है इधर का माहौल या उधर का माहौल, तो ये है ना कि हर वालदैन, अपनी मेरी प्यारी बहन ने बड़ी अच्छी बात की है कि हर वालदैन चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा बने, उसकी मैं अच्छी से अच्छी तरबियत करूँ। तो कुछ माहौल का भी असर होता है, देखो जैसे पाकिस्तान में आप लोगों ने भी देखा होगा कि सुबह औरतें उठती थी बिस्मिल्लाह करके काम करना, बच्चों को कहना सबक पढ़ो, नमाज पढ़ो, तो फिर उसके बाद नाश्ता करना, बिस्मिल्लाह करके खाना शुरू करो, खाना खाने के बाद हाथ धो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करो। आजकल की जो दौर है, आजकल की माएं शायद ऐसा नहीं करती।
0: लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है आयशा जी, 100% ऐसा ही है, लेकिन कुछ घरों में अभी भी है। लेकिन मैंने ये भी तो देखा कि लोग अपने घरों में, आप कहते हैं ना, हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छा बने और अच्छी उसकी गुफ्तगू हो, अच्छा उठना बैठना हो, अच्छी तरबियत हो, लेकिन घर में वो गालियां भी दे रहे हैं बच्चों के सामने, झूठ भी बोल रहे हैं बच्चों के सामने, डोर पे कोई आया है तो कह रहे हैं बच्चे को कि कह दो कि डैड घर पे नहीं है, लाइक ऐसी चीज़ें, झूठ, गालियां देना, इस तरह की चीजें भी सिखाई जाती है ना, ये तो ठीक नहीं है। आपका क्या ख्याल है?
3: आपने ये भी देखा होगा कि जब आप बचपन में होते थे, दो औरतें बैठी होती थी तो बच्चों को साथ नहीं बिठाती थी, कहते कि बड़े बात कर रहे हैं, आप जाओ खेलो। वो नहीं कहते थे कि कच्चा जहन है, इनमें कोई गलत बात फीट हो। आजकल के दौर में उधर ही बच्चे खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, साथ ही बड़े बैठे हैं, हर तरह की डिस्कस कर रहे हैं, फलां ने ये कर दिया, फलां ने वो कर दिया, उधर ही सारी बातें हो रही हैं, तो वो बच्चे सारा कुछ देख तो टीवी रहे होते हैं मगर सुन रहे होते हैं। ये बात बहुत गलत है कि हम खुद बच्चों को इस चीज से सोचें कि बच्चे हैं, इनको क्या पता है, मगर बच्चे कोरे कागज हैं।
0: Exactly.
3: दो महीने का, छह महीने का भी बच्चा होना तो वो भी वही कुछ करेगा, समझाने से बच्चे नहीं समझते, जो देखते हैं वो कॉपी करते हैं। छह महीने का भी बच्चा होगा ना तो वो जैसा घर में देखेगा ना उसी तरह की कॉपी करेगा, तो हम लोग बड़े खुश होते हैं कि देखो हमारा बच्चा कॉपी कर रहा है, मगर जब वो बच्चा सियाना होता है तो हम बड़े माँ बाप हैं या फैमिली जॉइंट फैमिली में रहते हैं या हाल ही माँ बाप दोनों हैं, तो वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि जो हमारे घर का माहौल है ये बच्चा पिकअप कर रहा है।
0: हाँ, लेकिन आयशा ये आपकी बात बहुत बहुत अच्छी है, बिल्कुल 100% दुरुस्त है, लेकिन ऐसा क्यों ना हो,
3: जब माँ बाप आपस में झगड़ा भी कर रहे हैं, गालियां गलौज भी दे रहे हैं, बदतमीजी भी एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, तो वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर वो वालदैन
0: वो ही सीखते हैं, लेकिन ऐसा क्यों ना हो,
3: देखा ही नहीं।
0: हाँ, लेकिन आयशा ऐसा क्यों ना हो कि हमारे बच्चे हमारे साथ बैठे, हम बड़े बातें कर रहे हैं, मैं अपनी सहेली से बातें कर रही हूँ, तो हम उनके आगे दूसरों की चुगली ना करें, हमें चुगली तो उनकी मौजूदगी में भी या गैर मौजूदगी में भी करनी ही नहीं चाहिए, हमें डर ही क्यों हो, हम अच्छी बातें करें, हम जब आप लड़ाई भी करें या कुछ ऐसा हो तो हमारी जो होती है वो सिविल तरीके से हो, ऐसी बातें हों कि ताकि बच्चा देखे कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाए तो आपको किस तरह से डिसेंट और सिविल रह के मामले को हल करना है, बजाय इसके कि बच्चे को कहें कि हम बैठे हुए बड़े आपस में बात कर रहे हैं, आप निकलें यहाँ से, क्यों ना हम उनको बैठे रहने दें और हम ऐसी बातें करें कि बच्चे सुने, हाँ हाँ दोस्तों के साथ, माँ की सहेली थी, माँ अपनी सहेली के साथ हंसी खेल में भी बातें कर रही थी, तो किस लेवल की बात गुफ्तगू हो रही थी, बच्चे सीखते हैं, बच्चे एक स्पॉन्ज की तरह होते हैं, जितने और ड्रॉप्स पानी के ड्रॉप की तरह आपकी बातों को एब्जॉर्ब करते हैं, तो क्या ख्याल है कि बजाय कि उनको भगाया जाए क्यों ना उनको अच्छी तरबियत दी जाए?
3: वो बात आपकी दुरुस्त है, मगर मेरी पहली बात है कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता एक दूसरे की मिनी सलामवा करने का या दूसरी बात है अगर कोई आधा घंटा 15 मिनट इसके लिए निकाल भी लेता है तो उसने हजारों अपनी परेशानियां
0: हाँ ये बात तो ठीक है, बातें आपकी सारी ठीक है बिल्कुल।
3: और जो दूसरी है वो भी कहेगी कि तू चुप कर, तूने आज ही सुना ली है बात, उसे आगे मेरी सुन।
0: ये तो है,
3: बच्चे को फिर इससे बेहतर है कि बच्चों को इस मॉल में बिठाना ही नहीं चाहिए।
0: हाँ।
3: दूसरी बात है कि हमारे जब माए होती थी कोई बड़ा बंदा आता था कोई बुजुर्ग तो कहते जाओ सलाम दुआ करो, चाचा आया है मामा आया फलां गना इसको सलाम दुआ करो,
0: बिल्कुल
3: ये सिखाती थी एक तरीका था।
0: हाँ।
3: आजकल के बच्चे हैं तो हम इस तरह की अगर कोई घर में आ गया तो हम नहीं कहते या खाना खाने के बाद हम नहीं कहते कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करो हाथ दो इस तरह या अपना बर्तन उठा के किचन में रखो, इस तरह की चीजें हम कुछ घरानों में हो रही हैं पर कुछ घरानों में नहीं है। और कुछ वालदैन भी ऐसे हैं कि वो घर में झगड़ा लड़ाई के साथ एक दूसरे की टेंशन एक दूसरे पे निकाल रहे होते हैं और वो बच्चे देख रहे होते हैं और वो बच्चे जो होते हैं वो बाहर जाके फिर वो उनको उनका दिल माँ बाप से मुतफर हो जाता है। जब बड़े होते हैं तो वो बाहर दोस्त बनाते हैं, वो अपने मसले बाहर डिस्कस करते हैं और जब बाहर का माहौल उन्हें मिलता है तो फिर वो गलती रास्ते पे जाते हैं।
0: एग्जैक्टली, बहुत बहुत अच्छी बात की,
3: दूर कर रही
0: है 100% आयशा बहुत अच्छी बात की आपने।
3: कहते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं, बच्चे नहीं बिगड़े, बच्चों को हमने वो चीजें जो हमारे वालदैन ने सिखाई है वो खुद नहीं सिखा रहे।
0: हाँ।
3: अंग्रेज है ये बच्चों को यार छोटी से छोटी महंगी से महंगी चीजें लेके देते हैं, ये 16-17-18 साल तक बच्चे को फुल टाइम देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आप तुम इंडिपेंडेंट हो, अब बड़े हो गए हो, अपनी जिंदगी जियो, अपने या ना पैरों पे खड़ा हो,
0: उनकी सोच को डायरेक्शन दे देते हैं। एग्जैक्टली,
3: हम 10 नस्लों आगे 10 नस्लों की सोच रहे हैं कि इसके पोते पड़पोते के लिए भी बना के देख लिया, मगर जो बच्चे का आगे उसे नहीं दे।
0: क्या बात है जी, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी बातें आयशा जी, मजा आ गया, थैंक यू।
3: पता नहीं किस चीज के दिल पे लगी होंगी मैं पहले बात।
0: नहीं नहीं नहीं, दिल पे लगने वाली बात नहीं है, हम जनरल बात कर रहे हैं और हम क्या करते हैं, हम वही मैं हमेशा कहा करती हूँ आयशा जी कि हम कौन होते हैं किसी को सुधारने वाले, हम खुद को भी सुधार लें तो बड़ी बात है। जब हम ऐसी बातों को डिस्कशन करते हैं ना तो हम अपने आप को एनालाइज करते हैं, स्पेशली मैं तो डेफिनेटली करती हूँ कि मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ। हम किसी को भी किसी की दिल आजारी करने के लिए नहीं करते, हम इसलिए जनरल टॉपिक ऐसे रखते हैं जो सबके दिल के करीब हों।
3: फिर दूसरी बात है, मैं जाते जाते एक बात और कह जाऊँ, हम बच्चियों की तो कहते हैं कि मदरसों में भी हर जगह कह रहे हैं बच्चियों की तरबियत करो, बच्चियों की तरबियत करो, बच्चियों की तरबियत से ज्यादा बच्चे की तरबियत।
0: नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है आयशा जी, मैं ख्याल है कंक्लूड करते हैं, ब्रेक का टाइम होने लगा है, आई एम सॉरी कंक्लूड करना पड़ेगा। आपकी सारी बातें बहुत अच्छी थी, मैं तो ये सोचती हूँ बच्ची और बच्चे दोनों की इक्वली तरबियत होनी चाहिए, आपने बहुत अच्छी बातें की, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आयशा जी, जज़ाकअल्लाह, मज़ा आ गया, बाय बाय जी। समीन, ये तो थी आयशा जी हमारे साथ और उससे पहले यास्मीन बहन ने भी बहुत खूबसूरत बातें की, हमेशा वो अच्छी बात लेकर आती हैं और डिफरेंट तरह की बात लेकर आती हैं। दोनों बहनों की बातें सुन के बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमें फ़ोन करना चाहें तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 01274-306666 पर। बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानेब, हमारे साथ रहिएगा।
4: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
5: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है, शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
4: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
5: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
6: ऋषि's विजन प्रेजेंट्स आनंद मूर्ति गुरुमा इन लंदन। लर्न टाइमलेस योगिक विजडम डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर्ड मास्टर। जॉइन अ 3-day सीरीज ऑफ एनलाइटनिंग टॉक्स ऑन योग सूत्रास फॉर रियलाइजिंग द ट्रू सेल्फ 11th to 13th September 2026। लाइफ चेंजिंग सेशंस फीचरिंग प्रोफाउंड टॉक्स, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY, on Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details call AK Basra 07977201226. निर्दोष कुमार 07899-055525 गुरकीरीत 07886-545970 उषा 07931788-062 विजिट www.rishisvision.org और www.guruma.com

चंद सेकंड के बाद जैसे ही अजान स्टार्ट होती है तो आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, तो फिर मैं आपको डेफिनेटली आपकी बात सुनूंगी। आई एम रियली सॉरी, मैं आपको ओपन एयर ले गई, मुझे लगा कि आप ओपन एयर आना चाहती हैं इसीलिए आपने फ़ोन किया है। तो बढ़ते हैं हम अजान ब्रेक की जानिब, मिलते हैं इसके बाद। बहन आप मुझे अब फ़ोन कर लीजिएगा, आपको ओपन एयर नहीं ले जाती।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: जी हाँ, वेलकम बैक सामेन। सॉरी, वापस आने में कुछ सेकंड लग गए। कुछ ऐसा था कि हमारी बात हुई हमारी बहुत ही अच्छी कॉलर समीना जी से, और उन्होंने बहुत ही डिटेल में बात की बच्चों की तरबियत पे, पाकिस्तान के पे के किस तरह से यहाँ पे उन्होंने तरबियत की अपने बच्चों की, उनकी अपनी तरबियत पाकिस्तान में हुई। डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही अच्छी उन्होंने बातें की। और एक जो उनकी बात का हासिल था जो मुझे मेरे दिल को बहुत ज़्यादा लगी, उन्होंने ये कहा कि उस ज़माने में जब हम छोटे थे या पाकिस्तान में बहुत से एरियाज़ में अब भी पेरेंट्स को डिप्रेशन होता है, और बहुत से डिप्रेशन पता भी नहीं होता कि उनको डायग्नोज भी नहीं हुए होते, और समटाइम्स वो गुस्सा भी बच्चों पर निकाल देते हैं। तो ये जो डिप्रेशन वाली बात है, मुझे लगा ये 100% दुरुस्त उन्होंने की है। और साथ में एक और बात उन्होंने की कि जब यहाँ पे बच्चों का एटीट्यूड होता है, तो उन्होंने पिछले कॉलर्स की बातों के भी हवाले दिए और कहा कि जब बच्चे बाहर जाते हैं, खाना खाने बाहर चले जाते हैं, पेरेंट्स को नहीं पूछते हैं, अपने स्पाउस के साथ चले जाते हैं, तो एक्सपेक्टेशंस, असल चीज़ एक्सपेक्टेशंस है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों से क्या हैं। जहाँ पे, सिर्फ बच्चों से नहीं, जहाँ पे आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस रखी वहाँ पे अपना दिल तोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। सिर्फ बच्चों से नहीं, फ्रेंड्स से, रिश्तेदारों से, स्पाउस से, जिस टाइम आपकी एक्सपेक्टेशंस आएं आप रेडी हो जाएं कि आपका दिल टूटना ही टूटना जी। तो जनाब ऐसा करते हैं, समीना जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ज़रूर आते रहिएगा, हमसे बात करते रहिएगा। हम बढ़ते हैं अपने फ्लैशबैक गीत की जानिब, और फ्लैशबैक गीत के बाद आपसे होती है मुलाकात। अगर इस दौरान आप हमें फ़ोन करना चाहें, क्योंकि एनोनिमस नंबर से दो तीन बार कॉल आ रही थी, लेकिन इत्तफाक ये हुआ कि जब भी उनकी कॉल आई मैं लाइन पर थी। अगर आप दोबारा फ़ोन कर लें तो मैं कोशिश करूँगी कि आपकी कॉल ज़रूर अटेंड करूँ। बढ़ते हैं अपने फ्लैशबैक गीत की जानिब।
1: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: अरे झूठ बोले कवा काटे, आपने सुना फ्लैशबैक के तौर पे ये गीत, जबकि मैंने तो समझा था ये वो वाला गीत होगा, मैं मायके चली जाऊंगी, झूठ बोले कवा काटे काले कवे से डरियो, लेकिन ये भी अच्छा गीत था, उम्मीद है ये भी कुछ हमारे लिसनर्स को पसंद आया होगा। मैंने समझा ये वो वाला गीत होगा तो मैंने उस तरह से लगा दिया, उम्मीद है ये भी अच्छा लगा होगा आपको गीत। इस दौरान हमारी वफा जी से बात हुई और वफा जी ने बहुत ही खूबसूरत बातें की, वो ऑन एयर बात नहीं करना चाहती, लेकिन उन्होंने दो चीज़ें की कहीं। एक तो उन्होंने कहा कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके हवाले से, उन्होंने कहा कि जो हम ऐसा करते हैं, जो आजकल की जनरेशन है या हमारी जनरेशन है, पहले भी जनरेशन, हम ऐसा करते हैं बच्चों को, अपनी औलाद को अपनी इन्वेस्टमेंट समझते हैं कि आज हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम कल इनसे वापस रिटर्न में लेंगे। एक जनरेशन ये गुजरी है कि आप बच्चों को प्रेशराइज़ करना, आपने ये बनना है, फिर उससे वो लेंगे, सोसाइटी में इज्जत बनेगी, मेरा बच्चा इस पोजीशन पे है, इस पोस्ट पे है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, फलानी पोस्ट पे है, फलानी पोस्ट पे है, सीएसएस ऑफिसर है, तो इस तरह की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं बच्चे से, वो असल में वो इन्वेस्ट समझते हैं हम कर रहे हैं और बाद में हम इस इन्वेस्टमेंट से कमाएंगे। सीरियस सी बात है, लेकिन अचानक से एक जोक जहन में आ गया। जोक कुछ यूं था कि दो बच्चे बातें आपस में कर रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई ये अम्मी अब्बू अपना नाम खुद क्यों रोशन नहीं करते, हमें क्यों कहते हैं कि हमारा नाम रोशन करो, अगर उन्हें शौक है उनका नाम रोशन हो तो वो खुद कर लें। लेकिन ये बात वफा जी ने की कि एक्सपेक्टेशंस और बच्चों को इन्वेस्टमेंट समझना, आप इन्वेस्ट करें बच्चों में, उनमें इखलाकी कदरें इन्वेस्ट करें और फिर उनको देखेंगे वो किस तरह से ऐसे आपके सामने आते हैं कि आपकी दुनिया में इज्जत होती है। लेकिन फिर वही बात, अपनी इज्जत खुद बनाएं, बच्चों को इतनी अच्छी इज्जत और इतनी अच्छी कदरें, इतनी अच्छी वैल्यूज दें कि वो भी अपनी इज्जत बनाएं। उन्होंने एक ये बात की और दूसरी उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की, वफा जी ने, बहुत शुक्रिया इस बात पे भी रोशनी डालने का वफा जी, कि आपने ये कहा कि जो हमारा एक होता है पेरेंट्स का एतमाद, कहती हैं हमारे पेरेंट्स ने हमें मारा नहीं, हमें डांटा नहीं, लेकिन उनको ये हम पे ट्रस्ट था। और मेरे, उन्होंने कहा कि मैं अब जब पढ़ने के लिए कॉलेज गई और वो बहुत दूर था और मेरे वालिद साहब ने कहा कि आपने जहाँ पढ़ना है पढ़ो, मुझे तुम पे एतमाद है। पेरेंट्स का बच्चों पे एतमाद होना, उनको बताना कि हम तुम पे ट्रस्ट करते हैं, तो वो भी बच्चों को एक राइट डायरेक्शन दे देता है कि मैं अब अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट ना तोड़ूं। तो ये वाली बात जो उन्होंने की, ये भी बहुत बहुत मुनासिब की और बहुत अच्छी बात की कि पेरेंट्स का ट्रस्ट रखना, और ये भी हमें सिखाया जाता था कि अब हम अपने बच्चों पे को कहें कि वी ट्रस्ट यू, वी ट्रस्ट, वी हैव गॉट वेरी ट्रस्ट ऑन यू कि आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे, तो मे बी वो वर्क करे। तो ये दोनों बातें वफा जी ने बहुत अच्छी की। महबूब इलाही जी, आपकी कॉल मिस हो गई क्योंकि उस दौरान मैं एक और कॉल पे थी, एंड आई अपोलोजाइज फॉर दैट। तो इंशाल्लाह जब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम होगा, क्योंकि अब हम प्रोग्राम के अख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम होगा तो उसमें हमारी जो बात होगी वो होगी एडिक्शन पे बात। और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि हमने एक वो ऑस्ट्रेलिया में लिवरपूल हॉस्पिटल की सबसे बड़ी डॉक्टर हैं, उनका काम है एडिक्शन जो होती है बच्चों में और बड़ों में, जिन्हों में भी ड्रग्स की एडिक्शन पे कि वो स्पेशलिस्ट हैं और वो उसका इलाज करती हैं। लेकिन वो 21 किताबों की मुसन्निफा हैं। उनकी नई एक किताब आई है विरसा, जिसका टाइटल मैंने बनाया है उस बुक का कवर पेज, इसलिए मुझे वो किताब बहुत प्यारी है। उनकी सभी किताबें बहुत अच्छी हैं। बहुत उन्होंने 8 साल की उम्र में लिखना शुरू किया और पब्लिश होना शुरू किया। तो इंशाल्लाह उनसे बात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
1: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.

0: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.
1: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
2: बड़ी तकरीबात के लिए जना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
1: छोटी गैदरिंग के लिए जना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
2: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
1: बुकिंग्स और मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 01274-733-732। जना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।

0: try it down the road.
1: We can get it in, but it won't be for a few days.
2: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
3: गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया
4: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना
3: चाचा केड़ा चाचा
4: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकन तीला सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
4: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935

0: अफसेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Who doesn't want to save money on their energy bills and improve their home at the same time? Home Energy West Yorkshire can help you do just that. They offer free, impartial and easy to understand advice, no matter the size of your home or budget. Find out more at their Bradford Interchange pop-up shop every Wednesday and Thursday between 10 and 4. You could even win a prize, including shopping vouchers and family days out. Search Home Energy West Yorkshire.

0: ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला है सिर्फ 2 पौंड ना कन सलाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: फ्री कोर्सेज एट शिपली कॉलेज, free teaching assistant courses, free health and social care courses, free childcare courses, free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.
3: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chooza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant. Tradition, taste, and something new.

0: ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तेहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाएं रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 01274735043 पर कॉल करें।
1: No, sorry, mate.
2: No, we don't have that part.
1: Have you tried down the road?
3: We can get it in, but it won't be for a few days.
4: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobileovervan.
5: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
0: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
5: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
0: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
6: Official media partner, Sunrise Radio.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London, with even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.
3: Jay Sean.

0: मर्सिडीज बेंज वैंस की ओर से हैं जो संदाज रेडियो के साथ मिलकर लाए गए। यहाँ एक ऐसा आंकड़ा है जिस पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। यूके में गाड़ियों के काम न करने डाउन टाइम की वजह से बिजनेस को हर वैन के लिए रोज़ाना औसतन 1172 पाउंड का नुकसान होता है। इसलिए मर्सिडीज बेंज वैंस ने अप टाइम प्रॉमिस शुरू किया है, रोडसाइड असिस्टेंस और ज़्यादा समय तक सर्विस की सुविधा से लेकर रियल टाइम में गाड़ी की खराबी का पता लगाने और भी बहुत कुछ। इनकी कई ऐसी सुविधाएं हैं जो आपके बिजनेस को बिना रुके चलने में मदद करती हैं। मर्सिडीज बेंज वैंस हमेशा आपके साथ है। आज ही मर्सिडीज बेंज वैंस सर्च करें और उनके अप टाइम प्रॉमिस के बारे में जानें। स्टे ऑन द रोड रिपोर्ट, श्रेय देना ज़रूरी है। ये रिसर्च यूके के उन बिजनेसेस में 500 सीनियर फैसला लेने वालों के बीच की गई है जहां वैन का इस्तेमाल बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा जानकारी के लिए mbvans.co.uk/uptimepromise पर जाएं।
1: जुतियां भी कसी गई हैं पर सस्ता सोना नहीं मिलिया। ओहो, ते तुसा चाचे कोल जाओ ना। चाचा केड़ा चाचा? चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले। जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी, नक्के नती लाए सिर्फ दो पौंडना। कान सलाने ना, एक पौंड छापा ते बंगा नहीं, कोई मजदूरी नहीं। ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है। ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने। एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता। चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274 4885।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्के नती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

0: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
1: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाया रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-7473-5043 पर कॉल करें

आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाए रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में

0: जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। सनराइज रेडियो पर इश्तेहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतिमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाए रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 012-74-735-043 पर कॉल करें।
1: No, sorry, mate.
2: No, we don't have that part.
1: Have you tried down the road?
3: We can get it in, but it won't be for a few days.
4: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorized repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.

0: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831165. Raman 078-341-77866. Usha 0793-178-8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
1: गलियां घरियां घुमी ते पैरां जुत्तियां भी कसी गईयां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
2: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
1: चाचा केड़ा चाचा?
2: चाचा जूलर ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 आले। जिन्ना है स्पेशल ऑफर कंडी मारी। नक्के नतीला है सिर्फ दो पौंड ना। कान सलाने ना, एक पौंड छापां ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं। ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है। ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
1: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता।
2: चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफ

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनुवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

सारे जग तो वध जच देने खुशी वेले गबरू ते मुटियारा रल के शौक दे नाल ये नच दे।

रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे

0: देखो किन्ना सोना बटोला किथे हो किथे ओ देखो इतनी आ रहा
1: हां ओदा पे भी पीछे आ छितर ता नहीं खाने
0: ओ यार अपने नु आ रही ओदा
1: ओ हो जा तैयार कंपोज योरसेल्फ
2: एक्सक्यूज मी विल यू